0: 6.9 inch को शानदार डिस्प्ले, AI powered कैमरा, 3 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh powerful बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: रेडियो बिहानी समय संकेत, यति बेला बिहानको 8 बज्यो।

0: प्रत्येकका चुनौती म आफ्ना वैरागले गाउँछु
1: काटे सागो चुनक चुनक जुत्ता भड्कुनाले मेरा साई।

0: बिना बादल आकाश आउँदो चट्ट्यान चुट्टुम झारी मेरा जै था दुख कहीं नहीं सारा त्यसै भरी
1: आधा स्वर्ग झम्पानी छ आधा स्वर्ग दिदो मैले बाँच्ने